0: नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल बालिका तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा।
1: डाक्टर अमित कुमार ठाकुर, वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट, आधुनिक रेडियोलोजी तथा विभिन्न डायग्नोस्टिक परीक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा।
0: डाक्टर अशोक कुमार रोकाया, वरिष्ठ जनरल सर्जन, विभिन्न शल्यक्रिया तथा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी रोगको विशेषज्ञ सेवा।
1: किन काक्रेबिहार विशेषज्ञ पोलिक्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर, वरिष्ठ तथा अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट सेवा, सुलभ तथा उचित शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो उपचार, आधुनिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा डायग्नोस्टिक सेवा, बिरामी मैत्री तथा आत्मीय वातावरण।
0: तपाईँ वा तपाईँका परिवारका सदस्यलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छ, एक पटक काक्रेबिहार विशेषज्ञ पोलिक्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टरमा अवश्य भेट्नुहोस्।
1: विशेषज्ञ सेवा, गुणस्तरीय उपचार, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य समस्याका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग परामर्श लिनुहोस्। सम्पर्क काक्रेबिहार विशेषज्ञ पोलिक्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर, वीरेन्द्र नगर छ, मंगलगढ़ी चोक, सुर्खेत। सम्पर्क नम्बर 083-591-1900।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: Radio Pity FM. Radio Pity FM.
3: रेडियो भेरी एफएम 98.6 102.7 मेगाहर्ट्ज
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
5: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: जनता केवल 5 दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 3 बजे को छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: देखो भगवती सब लैदौ भगवान
1: अरे
0: महाराज परीक्षित लाई सुखदेव ले बताने भो अब भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा को महिमा को वर्णन यहाँ मैंने प्रस्तुत करे हैं। कृष्ण भगवान अब एकादशी को व्रत बसेरा अपना घर दरबार में सवारी होना टी बक्से को थियो ते समय को बीच में वहां को पिताजी ले वरुण को नौकर ले छोरे रड़बाई जब लगे वरुणपुर में बुआ कहाँ जानु भो अत्यंत लज्जित हूं भो परमात्मा खोज जानु भो वरुणपुर में गो भो पिताजी किन ल्याईस आज्ञा कर मेरे नौकर ने छोरे प्रभु बने वरुण ने अब तेरे नौकर मार दी लगता हजुर को अनुहार दर्शन पाउना का नामी निमित्त मैं ये मेरे भगवान मलाई नमार दिनुस् नोकर नमार दिनुस् भने उनाले लपाइगो भनेर त्यहाँबाट प्रभु फर्काउनु भयो अनि च्याप समातेर परमात्माले बड़ा रमाइलो साथसँग नाचगान कीर्तन मनन भजनको प्रोग्राम सारा सम्पन्न गरी बक्स्यो महाराज अनि आफ्नो पिताजीलाई चाहिँ वरुणपुर लिएर जाने हामीलाई चाहिँ नलैजाने भनेर विरोध गरेका जब सारा गोपालहरूलाई यही हो वरुणपुर भएर वैकुण्ठ लैजानु भयो यही हो त वरुणपुर भन्दा यही हो वरुणपुर भन्दा भयो सरी वैकुण्ठको दर्शन पाए त्यस्तो भाग्य जामला वैकुण्ठ जामला वैकुण्ठ नाते गाउँदै भयो जाउँदै